सदगुरु आखदा है मरना कबूल कर जीवन दी आस छड़ हो सबना की रेणका सारयां दे चरणा दी तूड़ी बन इतना मिट तौ आओ हमारे पास ता जाके तू मेरे पास आई ता मैं तेरी गल सुनन तैयार हां ता मैं तेनु एक्सेप्ट करन तैयार हां अगर तू पूरी दी पूरी तरह अपनी मौत कबूल करे मौत कबूल करन तो भाव ए है कि मेरे पास जब तू आएगा उदो तेरी कोई हस्ती नहीं है तेरी कोई होंद नहीं है जो मैं आखा वो तेनु करना पेगा उथे तू अपना ज्ञान अपना नॉलेज अपनी मत अपनी मर्जी वो बिल्कुल नहीं लिया सकता तो जदों साड़ी ना मर्जी चले ना साड़ी मत चले ना साड़ा ज्ञान चले ना साड़ी इच्छा चले उदों असीं मर नहीं गए तो होर की हो गया इंसान उदों मर जांदा है इट इज इक्विवेलेंट टू डेथ बेसिकली क्योंकि इंसान गुरु दे सामने जाके गुलाम हो जाता है और महाराज जी कहते हैं इस तो बिना यह ऑपरेशन नहीं हो सकता इस तो बिना यह कारज नहीं हो सकता आपा चीनन दा जितनी देर तक तू अपनी मौत कबूल नहीं कर लेंदा मौत यानी अपने एक परम दे विच जो अपनी हस्ती बनाई हुई है कि मैं आ हां जितनी देर तक उस हस्ती की मौत कबूल नहीं कर लेंदा महाराज जी कहते हैं मैं तेन एक्सैप्ट नहीं कर सकता तू साडे पास आ ही नहीं सकता उथे तेरी इच्छा नहीं चलनी तेनू कुछ भी आखिया जाए तू कहे के ए सत्कार वाले लफज नहीं कहे तू गिजया होया है सत्कार वाले लफज सुनने हो सकता है तेनू जलील ही कर दिता जाए गुरु कुछ भी कर सकता है उसनू पता है की रिक्वायरमेंट है की रिक्वायर्ड है किस चीज की जरूरत है तेनू अपनी ए जड़ी आइडेंटिटी है इस दे नाल बहुत प्यार है इस दे नाल बहुत प्यार है गुरु मे चेंज दैट यू मे नॉट लाइक दैट पर तेरे पास अथॉरिटी नहीं है।

ना कर दी। ये गुरु की मर्जी है, क्योंकि गुरु ने उस चीज नु तोड़ना है जिस चीज दे नाल तेरा बहुत गहरा प्यार बन चुका है, न्यू बन चुका है। अपनी आइडेंटिटी दे नाल, पर्सनैलिटी दे नाल हर इंसान दा इतना प्यार हुंदा है कि उसनु को कहे ना कि तू अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ले, कदे कोई करन तैयार नहीं होए। गुरु नु अथॉरिटी, गुरु पास ये अथॉरिटी है, क्योंकि जो जरूरतमंद गया है गुरु जबरदस्ती किसी नहीं बुलांदा। हां, वैरागी उदासी जग्यासु क्वेस्ट दे विच आपा लभण दे वास्ते, दुखां दा मारिया जन्म मरण चो मुक्त होने दे वास्ते जांदा है। गुरु कहिंदा तेरा ये कार्ज मैं कर सकदा हां, पर तेनू पूरे दा पूरा सरेंडर करना पएगा, अपने आप पूरे दा पूरा सरेंडर करना पएगा। अगर तू ओ करन नू तैयार है ते मैं तेरी मदद करन नू तैयार हां। बाणी दे विच एक बहुत प्यारा शब्द आंदा है, गुरु महाराज जी आखदे हन सतगुर मिले। जदों इस टून दे विच असी सतगुरु नू मिलदे हां तो पहला कम की हुंदा है, सतगुर मिले। सतगुरु नू मिलके, सतगुरु नू मिलदिआं सार सो मरण दिखाए, ओ एक मौत दिखालदा है कि इस चीज दी मौत करनी पैनी। तेरे पास ज्ञान बहुत है, ओदी भी मौत करनी पैनी है, क्योंकि अगर असी कुछ कहांगे तू कहेगा जी मैनू भी पता है, मैं भी जानता हां, मैं इदां पढ़िया है, मैं इदां सुनिया है, फिर तेरी मैं तो उत्थे दी उत्थे रही, फिर असी मारिया किस चीज, फिर तेनू अपना ज्ञान भी छोड़ना पएगा, जो कि सब तो ज्यादा मुश्किल गल है। मैं अपने जीवन दे विच अपने कीर्तन दे दौरियां दे उत्ते ये अनुभव किया है कि जदों भी कोई शख्स कोई सवाल पूछते हैं, हाले उसका जवाब देना शुरू भी नहीं किया होंदा तो खुद ही जवाब देना शुरू कर देंगे, सवाल भी आप ही पूछते हैं और जवाब भी आप ही देंगे। और जे सवाल पूछते हैं तो बाद आखते हैं कि असं इस नाल एग्री नहीं करते, फिर तुम सवाल क्यों पूछते, इसका मतलब तुम जवाब का पता है। गुरु महाराज जी आखते हैं इतने तेरा ज्ञान भी नहीं चलेगा, मौत दिखाल दे हन कि तेरी टोटल मौत हो जाएगी। सतगुरु मिले, सतगुरु नु मिलना आ हुंदा है, बड़ी अजीब एक मिलनी है। सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, एक खास किस्म दा मरना दिखाल दे हन कि एना एना चीजां दी मौत सानू करनी पैनी है, तू कंसेंट साइन करदा है जा नहीं, तेनू कंसेंट साइन करनी पएगी, तेनू साडे नाल सहमत होना पएगा। अगर तू ये करन तैयार है तो फिर आपा चीनण दा काम हो सकता है। सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर भाए, गगन निवार गगनपुर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए। गर्भ निवार के हंकार नु, गर्भ दा अर्थ हंकार, कहिंदे हंकार तेरा तोड़ के फिर तेनू गगनपुरी जो अकाल पुरख वाहिगुरु का देश है उस पुरी का निवासी तेनू बनाया जा सकता है। पर एक गल तेनू मंजूर करनी पएगी, हां करनी पएगी, आपा चीनण दे वास्ते तेरी होमे नू मारना पएगा। तेरी होमे दे विच ही तेरा मन है, होमे दे विच ही तेरियां ख्वाहिशां हन, इच्छावां हन, होमे दे विच ही तेरी सुख अते दुख दी लालसा है, खुशी अते गमी है, होमे विच ही तेरी हार जित है, होमे करके तेरे जन्म मरन हन। गुरु बाबा जी आख दिन तेरी होमे नू सानू मारना पएगा। अगर तू उस मौत नू कबूल करदा है तो फिर असी तेरा आपा चीनण दा काम जो है वो कर सकते हैं। समा समाप्त है, इस आपा चीनण दी जो विचार है अगले कीर्तना दे विच हुण चलदी रहेगी कि आपा किवें चीनिया जांदा है, गुरु महाराज सिख दे नाल की करदे हन आपा चीनण दे वास्ते। तो सब तो पहली चीज अज असी जो सुनिया है, भगत कबीर जी आए हन ए सवाल लैके कि मैनू मुक्ति दियो। कहिंदे हन मुक्ति तां मिलनी है जदों तेरा भरम टुटेगा, भरम टुटे तो बिना तेनू मुक्ति नहीं मिलनी। जब लग टूटे ना ही मन भरम तब लग मुक्त ना कोई, उतनी देर तक मुक्ति नहीं होनी। और जो तू अपने आप नू समझदा है कि मैं आ हां, वो भी तेरा भरम है।
तू सोचता है मेनू एना चीजा का ज्ञान है, वह भी तेन भरम है, तेन किसी चीज का ज्ञान नहीं है। तू सोचता है मैं बहुत वड्डा हाँ, यह भी तेन भरम है। तू सोचता मैं बहुत खूबसूरत हाँ, यह भी तेन भरम है। तू सोचता है कि मैं जमदा हाँ मरदा हाँ, यह भी तेन भरम है। दरअसल जो तू है उसका तेन पता ही नहीं है। वह तू एक अपने आप की आप ही होंद बनाई हुई है, उसनू संभालदा फिरदा है, उसनू बचांदा फिरदा है, उसनू दुखी अते सुखी पाना है। कहिंदे उस होमे की उस सूडो सैल्फ की सानू मौत करनी पैनी है। किवें वह मौत करते हैं अते किवें उस सूडो सैल्फ नू निकाल के मार के निकाल के तो असलियत जो है वह दिखालते हैं, वह असी अगले कीर्तना दे विच विचारांगे। बहुत खूबसूरत और डूंगी विचार चल रही है। प्रेम दे नाल आओ सारे दर्शन दिओ गुरु बाबा जी के चरणों के विच, ताकि असी महाराज जी की जो बहुत गहरी आत्मक साइंस है, जो कि जीवन का मनोरथ है आपा लभण का, उसनू असी समझ सकीए, जान सकीए, फिर जो कुछ उस लई करना पएगा, वी विल कम टू दैट टू। कीर्तना दे विच असी इस विचार नू पूरी कंकलूड करांगे कि आपा पहचानण लई की कुछ करना पैंदा है, किवें हुंदा है। तो ओ महाराज बख्शिश करन, आप समय से रहो और उन्हां नू भी लियाओ। प्रेम नाल इस शब्द की पंक्ति गाओ, जिवें कबीर जी आए हैं, अपने दिल च भी ऐसी जो जिज्ञासा ते एक चाहत पैदा करो कि गुरुदेव मैं भी तेरे चरणा दे नाल लग के बेनती करदा हाँ कि मैनू भी दसो मैं कौन हाँ, मेरी असलियत मैनू समझाओ मैं कौन हाँ।

एतन होती खाक मेमाणी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

लेखना कबीरा तुरत केल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे की छे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए।

चले चलना हार बिचारा ले मनो, चले चलना हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी, जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए।

जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभमान लिया मनमोहन, राम नाम हृदय में तो लाद खेप।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोझे कैस कबीर सुमरे प्राणी कैस कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

तर्त आकाश पताल है चंद्र विनाशी। पातशाह उमराव खान ताए डेरे जासी, रंग तरंग करीब मस्त

बे उठ जासी मुकाम कर कर बैठना, मुकाम कर कर बैठना नित चलने की तोख, मुकाम ता पर जानिए जा रहे निचलो दुनिया कैसे मुकामे, दुनिया कैसे

0: रस पिछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान सिंचारियो
1: जन्म काल कर जोड़ जो होए सो मन्ने जन्म काल कर

निर्जीवड़े आप परदेश इस पवे जंजाले राम साचा साहेब मन मथे की फासे जमझाले राम मछली भी सुनी पर नैन रुनी मछली आटे की गोली की लालची अपना आप खत्म कर देंदी है। हे मेरे परदेसी जीवड़िया केड़े बहना च रह रहे हैं आपको भाई जोगा सिंह ने सोचिया अजे भी कोई मेनू वेख रहे है थोड़े समय के बाद हूं अमृत वेला हो गया कुसरी भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मना कोई नहीं तेनू वेखदा ए तेरे अपने मन के ख्याल हैं हूं चढ़ चल चबारे भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चबारे से चढ़ गया जिते पौड़ियां खत्म हुई जिस वे इतने पहुंचया तो सामने की तकिया प्यारी संगत इधर तो भाई जोगा सिंह पौड़ियां खानी चढ़िया जाता है इधर दशमेश पिता आनंदपुरी का वाली अमृत वेले समाधि भी जुड़े हुए कुर्सी भाई जी अचानक ही नेत्र खोले एक रुड़ गया काम कुंड काम के सागर रुड़ गया कोई है पहरेदार आ गया दयालु गुरु जी हुक्म करो हजूर कहने लगे खाकी वर्दी लियाओ लियांदी रेशमी बस्तर पहन वाला माध गुजरी का लाल पंथ का दाता अज खाकी वर्दी पा लेंगे चांदी की चौक भी लियाओ लियांदी हजूर अंतर ध्यान होए पहुंच गए जिस वेले भाई जोगा सिंह पौड़ियां खाणी उपर चढ़िया की तकिया सामने कोई सोने कद वाला हाथ भी चांदी भी चोब ते खाकी वर्दी पहन के सामने कोई सिपाही खड़ोता है आपको दिल भाई भाई जोगा सिंह ने सोचिया मैं तो समझिया थी इस वेले कोई भी ना होगा पर एक कौन तो परसों से है फिर सामने खड़ोते संतरी ने पहरेदार ने नेड़े होके कहा कि भाई तू कौन है अखोत्री भाई भाई जोगा सिंह नहीं बोले दूजी मेरी फिर पुछी है गर्दनी आवाज भाई जोगा सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिता तीसरी मेरी पहरेदार ने कहा भाई बोलता क्यों नहीं तू कौन है तू किधरे कलगिया वाले का सिखता नहीं आखोत्री भाई तेरी शक्ल वाल वेखिया मैनू गुरु याद आंदा है पर तेरी करतूत वाल वेखिया मालूम होंदा तू कोई शैतान है आखोत्री भाई भाई जोगा सिंह ने नजर नीवी कर दी पहरेदार ने कहा तेरे चेहरे के उत्ते गुरु की मोहर लगी हुई है फिर कलगिया वाले का सिख होके तू कितने आ गई भाई जोगा सिंह का नहीं बोले हम पहरेदार मुखातों के कहना की

नारद मुनि के चरण से ढह के किस प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तुसी तानू जो मेरे भगवान दे दर्शन जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां चू अथरू के रहे। नारद ने किया क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है के

आसा वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है, खुश रही होए। आसा वाले जीवन विच आस है ना, इंतजार है ना, एदे च बड़ा सुख है, एदे च कोई अगम्मी रस है। साई दी याद विच, मालक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां, पर प्यारी सतसंगत याद विच भी रहना ए भी अवस्था है। मालक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना, हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रव दर्स प्यासा नानक तके बल पर गया। इस प्यास जी जीवन बतीत होंदा रहे, फिर आपे मालक मेहर करे प्यारी।

ताल दा नाम ध्रुपद है, राग दा नाम तो तुसी सुनी चुके हो। साहब गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गरीब निवास जी का उचारिया होया पवित्र शब्द है, राग बिहागड़ा दी वार दे विच्चों ए शब्द है। श्लोक मल्ला चौथा, बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावे मर जम्मे आवे जाहे, बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्धे मारिए मुंह काले उठ जाए। चार पंक्तियां दा ए शब्द है। आप जी ने अस्थाई ध्रुपद दी सुनी है, अंतरा हुण लगा के फिर इसे शब्द नूं द्रुत चाल विच तीन ताल विच पढ़ांगे, एन टाइम दे उत्ते समाप्ति करनी है। प्यारी साध संगत, मैं आप संगत जी वल्लों श्रोमणी कमेटी दे प्रबंधकां नूं लख लख वधाई देना, जिन्हां ने अज दा इह समागम गुरुमत कीर्तन दरबार रागां दे विच राग दरबार जिसनूं कहिंदे आ उह करवाया है और बड़ा ही उद्यम कीता है। यह बड़ा शुभ कर्म है जो इन्होंने प्रबंधकां ने कीता। बहुत ही साड़ी आसा दे उत्ते इन्होंने सही साड़ी आसा पूरी कीती है, आसा नूं चंद लाए ने। गुरु कृपा करे इसे तरह ही इस तरह के प्रोग्राम करवांदे रहन, बड़ी खुशी हुई है। सो आप जी हुण अगलियां पंक्तियां दा कीर्तन अंतरा श्रवण करो। बिन सतगुरु सेवै ठवर ना पावे, बिन

सतगुरु सेवे बिन सतगुरु बिन सतगुरु से बिन सतगुरु सेवे बिन सतगुरु सेवे फिक्का बोलना बिन सतगुरु से बिन सतगुरु सेवे नाम नाम से मन।

मिल साध संगत पद केवल ना तो हुण साडे जुम्मे काम लगा ये असीं किन्ना कनवांदे हां। सत्संग जी यकीन करो मैं पुस्तकां पढ़ के आप जी नूं बेनती कर रहा हां, उसने पुछना है जिंदगी का सफर हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। जिंदगी का सफर हौले हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। तो जदों उन पूछा जाके बेटा बच्चिए तीए वह भी इदा बुला सत्संग जी मिठ बोलड़ा है साजन रब जी बहुत शीरी कलाम है। उन पूछना बच्चा तेनू आ काम दे के भेजिया सी कि भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ, तेरे खाते विचों तो कबूतर निकलिया नहीं, हुण की करा मैं। तीए बच्चिए तेनू भी यह काम दिता सी कि बाबे दे घर केवल नाम है, नाम दी पूंजी है, नानक के घर केवल नाम, इसलिए तेरे ते फर्ज लाया सी के केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की सरना। तैं किन्ना का कीता है हिसाब ते सारन देना पैना, इसलिए अगे जिन्ना का कीता कीता आगे समझ चलो नंदलाला जो बीती सो बीती हुण तो लग पई है। मैं शायद अगे भी बेनती कीती होवेगी, मैं बहुत बहुत चिर हो गया ना तुहाडे चरणा विच आंदे कई साल हो गए ने, ते एक ट्रक सड़क तो लै के खड्ड वे डिग पिया, हुण चलण जोगा ने खड वे डिग पिया है, पर मालक की करदे ने ओनू टो करके बाहर कढ लैंदे ने, ठीक ठाक करके ओहदे विच समान लद दिंदे ने, मंजिल वल ओहदा मुंह करके ड्राइवर नूं कहिंदे चल वे बच्चा लै जा, हुण ट्रक ते विच डिग्गिया होया सी पर कढ लिया वा। एन इसे तरह मेरी बेनती है सारे अगे हाथ जोड़ के जिन्हें कल तक अजे नहीं शुरू किया हुण शुरू कर लो, मंजिल वाल नूं मुंह होवे तां फिर तां यकीन करो कि मंजिल नेड़े आई का आई, हर कदम ते मंजिल घटदी जाएगी। ताजे रुख दूजे पासे नूं कीता जाना होवे लंडन नूं तुरे होइए इधर लीड्स नूं फिर कदों आएगी मंजिल, नहीं आएगी। महापुरुष यही कहिंदे रहे है कि नाम सिमरन करो, भजन करो, परमात्मा नूं याद करो। जद महापुरुष अपना फर्ज निभा रहा है तो सानू भी करना चाहिए। एक संत महापुरुष तुरे जाते से उन्होंने चुराहे भी देखा एक बहुत काला स्या धुआं पिया है, धुआं पिया है, नाल चेले बाल के भी सी महापुरुषा ने भी देख लिया धुआं बिल्कुल अकड़ के खड़ा ते काला स्या नीला होया पिया। उन्होंने झट चुक लिया, महापुरुषा ने चुक लिया ते धुएं ने डंग मार दिता, जहरीला एडा सी पे पकड़िया पकड़िया हाथ नीला काला स्या सुज के एडा हो गया। नाल दे चेले कहन लगे बाबा जी महाराज जी पे इन रहन देना सी पिया, इत्थे देखो ना तुहाडे इसने डंग मार दिता तुहाडे हाथ हाथ की हालत की हो गई है। कहिंदे बच्चो सुनो गल सुनो बचन सुनो, जेड़ा इहदा काम सी ओह इह कर रहा है, जेड़ा महापुरुष का काम है पे चुक के रांभे कर दे, इत्थे तो कोई राह ही जांदा होवेगा को मंजिल ते तुरिया जांदा होवेगा ओहदा लड़ जाएगा, ना कुछ नूं दारू मिल सकेगा ना दवा हो सकेगी। जद ए अपनी आदत नहीं छड़दा तां मैं अपनी फर्ज क्यों कुताही करा, जे अपनी आदत नहीं छोड़े उर्दू दा शेर, जे अपनी आदत नहीं छोड़े हम अपनी खूह क्यों बदले। इसलिए महापुरुष दा हर एक दा कर्तव्य है, कल नूं इत्थों अगे दर्शन दीदार करांगे गुरु जी सच्चे पातशाह रहमत नाल तुक कहीए ते कीर्तन की संपूर्णता करिए। आदर योग मेरे परम आदर योग संत बीबी जी सुरिंदर कौर जी तशरीफ फरमा होए ने, बहुत भागन की बात है। जिस दिन असि इधर आने दियारे में मार्च में ता भी असान दर्शन देने आए सन, इत आके भी कल मैं पता लग गया कि आदर जो बिब जी भैन जी आए हुए ने, मन गदगद होया है। हुण संगत के दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न होया, गुरु सच्चा पातशाह जो इन्होंने जुम्मे ड्यूटी लाई है ना मालक ने तो यह नभा दे जान, ओ नाम जपा दे जान। तो कहो सत्संग जी।

दूसरे शब्द शरण को जी भरत नारद पदार्थ वसा पर्याम वाणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते।

मेरे रब्बी दाता बचपन खेल कूद च गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप दा पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तो बुढ़ेपा आ गया, ए मेरे दाता उन तां कंबी दा बरूटड़ा हां पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता मैनू दर्शन दे, दर्शना दी दात पे मंगदा है कौ प्यारी सासंगत राय बुलार आखो श्री वाह राय ओ राय बुलार राय पवे तलवंडी दा मालिक। पहली वारी गुरु नानक नू वेख्या गुरु नानक जोगा हो गया, अज रो रहा बार खूह ते बैठा है, नौकर ने चौकी विछाई है उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पिया कर। हे मेरे दाता आ मैनू दर्शन दे, अखां विचों अथरू डिगदे, चिट्टे दुध वर्गे दाड़े ते आखे पैंदे, मन नू सुचे मोती जड़े हन प्यार दे, रोंदे अखां दियां सिप्पियां विचों प्यार दे सोची सुचे मोती डुलदे ते अरदास करदे कि आओ आपां वी करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राज बुलार बेनती कर रहे है, हे निरंकार धन गुरु नानक छके पातशाह बारह साल का विछोड़ा किवे सारे आ जा सकता है, आओ दर्शन दे। अखां वस रही हैं ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक बोले

पिताजी मेरे ननकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सर जावन ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नूं की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नूं मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है, ते बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दो। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सच्चे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाज़ किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह? अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारां भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेबे विच आड़ती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गई न पुराने आड़ती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने, एक टेलीग्राम दी तार मरदाने, एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विनदी चीजा परोम दीए, तार विनदी चीजा परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विनदी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदानी है नेत्र बंद कर छेती पहुंची। मरदाना अगे ही चाहुंदा सी, 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते, खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा आ खुश हो गई। पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहने लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तलवंडी आया ते हजूर ने मरदाने नू क्या, मरदाने ए पढ़ की

पोहम पातुक बिना से गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा से गुर अमरदास परसी।

खन्नी अवगुण कीते गुण परवाने हों तिस दे चौखन्नी मंदा किसे न आख वखाने हों तिस दे चौखन्नी आप ठगाए नोका पाने हों तिस दे चौखन्नी

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एत संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को पलना सो आए माए ग्रे काज लागे जाए, पलना सो आए माए ग्रे काज लागे जाए, सुन सुत रुदन पै पियावे मन मोद को,

डार है। पायल की पनी रहत पर हरी परी, काहू काहू काज उठ चलत सुमार है। छाड़ अंकार छाड़ होए पुरमार्ग में, छाड़ अंकार छाड़ होए।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे, तावन पर उपकार नो गुरसिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।